अनुसार ये पता चला है कि 50 करोड़ की रकम एक चटनी की गोनियों में छुपा कर एमजी गाड़ी में रखी गई। और मजे की बात ये है, ये कैश जिसे मिला वो पैसा उसका।

0: roll camera and action.
1: आदि वो लोग को शूट कर रहे हैं।
2: हमारे बिना शूटिंग ऐसे कर रहे हैं।
3: ये तो अपना ना ना। या कम ऑन। बाल की शूटिंग हमारे मगर।
4: Fairy boy, you're a legend.

विलायत भी आई करामत भी आई। सारी दस्त दामा ने ईमान आया, मोहम्मद के आने से कुरान आया कि मोहम्मद

जिसने देखी एक झलक रुकी वो शैदा हो गया, एक नजर पड़ते ही हर बीमार अच्छा हो गया। कैसा ही तूफान हो लेकिन पार बेड़ा हो गया, या मोहम्मद उसका हर गम से कनारा हो गया कि जिसके सर पर आप

बात को अपनी नहीं हरगिज़ शरीयत के खिलाफ, कुफ्र का फतवा न लग जाए खता मेरी हुमाफ। सब्ज गुम्बद के करी देखो नजर आता है साफ, सात इंसानों के कुदसी करते हैं जिसका तवाफ, बढ़ के काबे से।

करबला में लाज रख ली आपने ईमान की, बख्शिश उम्मत पे जब शर्ते शहादत लग गई। मरहबा ए फातिमा के लाल हुसैन इब्ने अली, दे दिया सर आ

अपना वाली है वही जो साहिबे मेराज है, जिसकी नालेनी मुबारक अर्श की सरताज है। गम के हाथों मेरे मौला जिंदगी का राज है, एक नजर की हस्ती इबरत फकत मोहताज है, कि तुमने जिस कतरे को भी